0: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మై జయా భారతి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं. न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे. श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे. वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे. मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे. इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है. भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है. दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए. भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई. वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं. दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है. इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए. इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है. और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के

0: अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का

0: उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है

0: कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हॉर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Chris

0: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन

0: मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। आकाशवाणी हैदराबाद के इस विशेष हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनकी प्रतिभा, कौशल और रचनात्मक सोच ही एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की नींव रखती है। हर वर्ष 15 जुलाई को पूरा विश्व वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे अर्थात विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन हमें युवाओं को गुणवत्ता युक्त कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के नए अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करने का संदेश देता है। आज के बढ़ते युग में तकनीकी ज्ञान, व्यवसायिक कौशल और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति ही सफलता की कुंज बन चुकी है। कौशल विकास के माध्यम से युवा न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी विशेष अवसर पर आज के कार्यक्रम में हम युवा कौशल विकास, रोजगार की संभावनाएं और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्किल्स सर्विसेस, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जॉइंट डायरेक्टर श्री के वेणुगोपाल राव जी, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे। और उनसे बातचीत प्रस्तुत कर रही है सीमा कुमारी। तो आइए एक कौशल, सशक्त और आत्मनिर्भर के निर्माण की दिशा में बढ़ते हुए सुनते हैं ये विशेष साक्षात्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है युवाओं में कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सशक्त कदम। आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि व्यवहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुकी है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं के वेणुगोपाल राव जी, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं यूथ स्किल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी। सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो कौशल विकास है यानी स्किल डेवलपमेंट है, ये है क्या और आज के समय में इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ गई है?
2: स्किल डेवलपमेंट हर एक फील्ड में है
1: जी,
2: नॉट ओनली टेक्निकल। हर एक स्टूडेंट अलॉन्ग विद देयर एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन, एक दो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज सीखे तो सो लाइफ लॉन्ग इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर देम। सो इसके वैसे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो गिविंग मच इम्पोर्टेंस टू द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स
1: जी।
2: सो दोनों हर एक लेवल में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने के लिए वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी जी जी।
2: गवर्नमेंट ऑफ स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इज नाउ एस्टैब्लिशिंग यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी
1: जी।
2: स्किल यूनिवर्सिटी में रेगुलर करिकुलम जैसा कॉलेज को जाके क्लासरूम में पढ़ाई ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में 90% ऑफ दी कंटेंट इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वो जाके इंडस्ट्री में काम करके सीख सकते, खाली 10% वो क्लासरूम में बैठ के थ्योरी सीख। इसलिए हर एक स्टूडेंट को नाउ स्किल डेवलपमेंट इज अ मस्ट।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो आज के युवा हैं, खासकर जो आज के मतलब जिन जी की जब हम बात करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं?
2: स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बोले तो आपको टेक्निकल कोर्सेज में आप कौन सा भी, अभी एज पर प्रेजेंट जनरेशन वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आर मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरास, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, हर एक मशीन को मशीन आया था उसके लिए एक टेक्नीशियन चाहिए, इंस्टॉलेशन के टेक्नीशियन चाहिए और उसका रिपेयर के भी टेक्नीशियन चाहिए। सो ऑल दिस इक्विपमेंट, व्हाटएवर इक्विपमेंट वी आर इन्वेस्ट

0: printing and we are using. For those equipment, we need technicians and servicemen. So, वो कोर्स और से वो लोग सीखे तो easily वो लोग independently वो लोग काम कर सकते. इसके साथ अभी not only technical courses, computer courses है, woman oriented courses है. अभी आपका ही fashion designing beautician तो
1: जी.
0: These two courses are evergreen. Fashion तो नहीं बदलते, fashion बदलते जाते.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: So beauty भी वैसा ही है.
1: जी.
0: इसलिए fashion designing beautician में women को नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. वो लोग बोटिक खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, नहीं तो शादी में जाके ब्यूटिशियन का सर्विस दे सकते हैं. इसलिए ये अनलिमिटेड है स्किल डेवलपमेंट.
1: जी. जब हम बात करते हैं भारत सरकार की, तो वहां पे युवाओं के कौशल विकास के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं जो हैं वो बनाई जा रही हैं और संचालित की जा रही हैं?
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट के बारे में बजट भी ज्यादा दे रहे हैं. उसके लिए नंबर वन कोर्स इज PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. इसमें डिफरेंट लेवल्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं. ऑल स्टेट गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं PMKVY का. युवा दोज हु वांट टू टेक अप द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड दे कैन गो अंडर गो ट्रेनिंग एट नियरेस्ट सेंटर. सो दिस इज द नंबर वन. अभी ग्रामीण प्रांत में है, ग्रामीण प्रांत वालों के लिए DDU JKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. इसमें लॉजिंग बोर्डिंग के साथ ट्रेनिंग दे रहे, क्योंकि विलेज में अभी फैसिलिटीज नहीं रहता, वो लोग नियरेस्ट टाउन में वो ट्रेनिंग ले सकते. इसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे. सो इसके साथ शहर का लोगों के लिए भी प्रोग्राम से PMKVY इसमें. और आर्टिजन्स है, आर्टिजन्स मतलब एक बार्बर, एक प्लम्बर, नहीं तो एक कारपेंटर, ये लोग भी वो लोग स्किल अपग्रेड करने के लिए PM विश्वकर्मा प्रोग्राम लॉन्च करे. ये PM विश्वकर्मा प्रोग्राम में हर एक आर्टिजन ऑनलाइन में अप्लाई करके नियरेस्ट सेंटर को जाके वो लोग ट्रेनिंग ले सकते. इसके 7 डेज का प्रोग्राम है. 7 डेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंड भी देते हैं वो लोग को बच्चों. और मुस्लिम्स के लिए स्पेशली फॉर द माइनॉरिटी पीपल PM विकास प्रोग्राम है. मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम PM विकास. इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस में ट्रेनिंग दे रहे. ट्रेनिंग के साथ उन लोग को स्टाइपेंड भी मिलता और आफ्टर ट्रेनिंग दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट आल्सो.
1: जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने. यानी हमारे जो भी युवा श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस योजनाओं के द्वारा लाभ उठा सकते हैं.
0: यस yes.
1: अब हम बात करेंगे जो ग्रामीण और शहरी युवा हैं उनके लिए कौशल विकास के अवसर में क्या डिफरेंसेस हैं. जैसे एक ग्रामीण युवा है उसके लिए कौन कौन से कौशल विकास के अवसर हैं, जो शहरी है उसके लिए कौन कौन से विकास के अवसर हैं?
0: सो ऐसा मैं तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ग्रामीण और शहरी में.
1: जी,
0: दोनों को स्किल डेवलपमेंट चाहिए, मगर डिपेंडिंग अपॉन दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दी विलेजेस उसके हिसाब से वो लोग रिलेटेड फील्ड में वो ट्रेनिंग दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फार्मर के लिए कुछ मदद करना, इलेक्ट्रिक मोटर्स का रिपेयर. अभी सीसी कैमरास तो हर एक जगह आ गया, सीसी कैमरास इंस्टॉलेशन का. और नया ट्रेंड है सोलार का, सोलार इंस्टॉलेशन, सोलार मोटर्स आ रहा, सोलार पंप सेट्स आ रहा. और सोलार का PM सूर्यघर प्रोग्राम में हर एक घर में ये सोलार इंस्टॉलेशन करने के लिए उसके लिए भी टेक्नीशियंस चाहिए. वो टेक्नीशियंस के लिए बहुत डिमांड भी है. वो डिमांड के हिसाब से वो लोग उधर ट्रेनिंग ले सकते हैं. शहर में तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, फैक्ट्रीज रहता, इधर कंपनीज रहता. वो कंपनीज के हिसाब से ये कंपनी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके हिसाब से ट्रेनिंग लिया तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इमीडिएटली वो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है.
1: जी, बात करेंगे हम तकनीकी कौशल की. मान लीजिए अगर किसी ने कोई टेक्निकल स्किल सीख लिया तो वो पर्याप्त तो होता नहीं है. इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स हो गए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लीडरशिप कैपेबिलिटी हो गई, टीम वर्क हो गया, तो ये कितना आवश्यक है और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
0: ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के साथ लोग का ये बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि लाइफ सॉफ्ट स्किल्स होना, सॉफ्ट स्किल्स सीखना होना, कंप्यूटर स्किल्स का जरूरत है, लाइफ स्किल्स का जरूरत है, बिहेवियरल स्किल्स का जरूरत है, किससे कैसा बात करना. अगर उन्होंने खुद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करे, समझो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप ओन स्टार्ट करे, तो कस्टमर से कैसा बात करना, सो ऑफिशियल से कैसा बात करना, क्या क्या लाइसेंसेस लाना, ये भी पूरा सीखना इसमें एक पार्ट है एक्चुअली. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहे गवर्नमेंट भी, नॉट ओनली स्किल डेवलपमेंट के साथ ये कोर्सेज भी साइमल्टेनियसली वो ऐड करके वो लोग उसमें भी ट्रेनिंग दे रहे हैं.
1: जी, डिजिटल युग में कौन कौन से नए कौशल विकास के जो क्षेत्र हैं, अवसर हैं, वो आ रहे हैं?
0: अभी डिजिटल तो हर एक दिन टेक्नोलॉजी बदलते जा रहा है. सभी थोड़ा यूनिवर्सिटीज और कुछ कॉलेज भी ऑनलाइन कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करें. अगर आप बिजी है, आप कॉलेज में जा रहे हैं, सीखने को टाइम नहीं है जाके इंस्टीट्यूट को जाके, वो लोग के लिए ऑनलाइन में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं. किधर अब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, उधर आप ऑनलाइन में भी डिजिटल माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते.
1: जी, और मतलब इसे क्या क्षेत्र जो है और अवसर सारे लोगों के लिए बढ़ रहे हैं, खासकर जो लोग घर में हैं, खासकर जो महिलाएं हैं. अब मैं बात करूंगी महिलाओं की.

0: क्योंकि महिलाएं और युवतियां जो हैं वो कौशल विकास के माध्यम से किस प्रकार आत्मनिर्भर बन सकती हैं?
1: महिलाओं के लिए अभी हमारे पास, मैं सिटविन एमडी के ऑलमोस्ट 8 ईयर्स उधर काम करे,
0: जी
1: हम देखे तो हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 50-60% आर वुमेन ट्रेनीज,
0: जी
1: बिकॉज हाउस वाइफ, कॉलेज स्टूडेंट्स, अभी इधर कॉलेज में पढ़ रहे, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे, वो स्टूडेंट्स को क्या है, अगर उन्होंने टेक्निकल कोर्सेस अगर इंजीनियरिंग पढ़ते भी उनको एक काश रहेगा मैं ब्यूटिशियन सीखना बोले,
0: जी बिल्कुल
1: सो इंजीनियरिंग में ब्यूटिशियन नहीं सिखाते वो,
0: नहीं
1: लोग
0: सिखाते
1: आके सेटून में ज्वाइन होकर ब्यूटिशियन का कोर्स, क्योंकि वो पैशन, वो बाद में वो एम्प्लॉयमेंट भी बन सके अभी,
0: जी
1: क्योंकि फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन में एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इजी, लाइक ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दे कैन स्टार्ट देयर ओन वेंचर, खुद का बोटिक खोल सकते हैं अगर कुछ ज्यादा पैसा है तो, नहीं तो आप घर में ही एक मशीन लेके
0: बिल्कुल
1: स्विंग का काम कर सकते हैं, नहीं तो ब्यूटिशियन, अभी ब्यूटिशियन का तो इतना डिमांड है, हर एक मैरिज में ईच ब्यूटिशियन इज गेटिंग मोर देन 50-1 लाख,
0: यस यस
1: पहले खाली एक ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को दोनों को करे तो बस होता था, अभी पूरा खानदान को
0: जी
1: ये सर्विस
0: बिल्कुल
1: देना पड़ रहा है अभी,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई आपने। और मेहंदी हल्दी ये
1: मेहंदी
0: सारे
1: फंक्शन
0: फंक्शन
1: आ
0: भी
1: गए,
0: बढ़
1: हल्दी
0: गए
1: का
0: हैं। जी
1: फंक्शन आ गया,
0: जी
1: ये ट्रेडिशन बन गए, ट्रेडिशन बन गए, तो
0: जी
1: ये इट
0: जी
1: इज बिकमिंग एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम।
0: जी अब हम बात करेंगे, सिर्फ ये प्रशिक्षण की ही बात नहीं है कि आप टेक्निकल स्किल्स ले रहे हैं, मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्रीज है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन आप लोग
1: इसके
0: बैठाते
1: साथ
0: हैं?
1: वही है, मैं पहले ही
0: जी
1: बताया आपको, अभी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं,
0: जी
1: अभी थोड़ा कोर्सेज तो शुरू हो गया, उसके कंप्लीटली दे आर लिंक्ड विद द इंडस्ट्री, लाइक आप मेडिकल समझो ये टाइप होता, क्योंकि स्टूडेंट अभी ज्वाइन होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर 1 or 2 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग ही विल गो टू हॉस्पिटल रबर मेड स्किल्स टू फॉर दी फर्दर ट्रेनिंग, जैसा ही फार्मा का, नहीं तो आप बैंकिंग का, कौन सा भी सेक्टर ले, वो सेक्टर में दे विल डायरेक्टली गो टू द इंडस्ट्री एंड दे विल वर्क इन द इंडस्ट्री टिल दे कंप्लीट देयर कोर्स। इसमें क्या होता, इंडस्ट्री को इमीडिएटली आफ्टर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद पूरा स्किल्स उन्हों सीख ले, इंडस्ट्री का क्या क्या स्किल्स होना वो स्किल्स पूरा ये ट्रेनिंग में हो जाता, इमीडिएटली डे वन से उनको जॉब मिलता।
0: जी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट,
0: जी
1: स्टूडेंट को क्या इंटरेस्ट है वही सीखना, उनको लेके जाए के नहीं नहीं ये आप उनको एयर कंडीशनिंग में इंटरेस्ट है, नहीं नहीं जी ये कंप्यूटर सीखो बोले तो वेस्ट है वो,
0: जी
1: एज पर देयर इंटरेस्ट ये कोर्स उन्होंने चुने तो बहुत अच्छा, क्योंकि हर एक कोर्स में अभी तो डिमांड फुल है
0: बिल्कुल
1: नाउ एज पर दी मार्केट ट्रेंड्स, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कहा है कि तो नो स्किल्ड एम्प्लॉय
0: नो स्किल्ड एम्प्लॉय
1: इज
0: जी हाँ
1: इंडस्ट्री क्या देख रही है, स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए देख, अगर स्किल्ड एम्प्लॉय मिल गए तो इंडस्ट्री में इमीडिएटली उन्हें भर्ती हो जाता, इमीडिएटली विल गेट दिस सैलरी फ्रॉम द डे वन।
0: जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। आने वाले वर्षों में जैसे कि जो भी हमारे युवा हैं वो अपने रोजगार के क्षेत्र में कौन से कौशल विकास के क्षेत्र चुन सकते हैं?
1: अभी तो ट्रेंड आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
0: जी
1: सो
0: जी
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे तो बहुत अच्छा है वो लोग,
0: जी
1: अगर वो डिग्री इंजीनियरिंग पढ़ के, सो वो नहीं है, दूसरा कोर्सेस का भी फुल डिमांड है, किधर मैन पावर का जरूरत है वो कोर्स में, दूसरा मशीन आके वो तो नहीं कर सकते, वो रिपेयर नहीं कर सकते, उसके जगह एक टेक्नीशियन का आवश्यकता है, इसलिए कैंडिडेट उनका मन को कौन सा अच्छा लगता वो कोर्स सीखे तो बहुत अच्छा लगता,
0: जी बहुत अच्छी बात बताई
1: हर
0: आपने।
1: एक को डिमांड है इधर।
0: जी,
1: आपका
0: खास
1: एंकर, अभी यहाँ पे आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपका
0: जी
1: एंकर और इसका भी बहुत डिमांड है, क्योंकि
0: जी
1: देर आर सो मेनी प्राइवेट चैनल, सो मेनी
0: जी
1: मीडिया में
0: बिल्कुल
1: भी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, आपको
0: जी
1: वीडियो एडिटर है,
0: जी ऑडियो
1: फॉर
0: एडिटर
1: ऑडियो
0: हैं
1: एडिटिंग है, कैमरा है, मिक्सिंग है, पूरा।
0: जी, जो युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, खासकर सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनके जो अभिभावक हैं जो गार्जियन हैं उनके
1: ये
0: लिए
1: तो
0: भी?
1: बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने खुद का एंटरप्राइनशिप लिया तो
0: जी
1: बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ और एक 4-5 जने को भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे सकते अगर खुद शुरू करे तो, सो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बहुत सारा स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे, लाइक पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, हमारे पास राजीव विकास प्रोग्राम बोल के गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इम्प्लीमेंट कर रहे, हर एक डिपार्टमेंट लाइक माइनॉरिटीज, एससी एसटी बीसी कॉर्पोरेशन, दे आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और ज्यादा ज्यादा प्रोग्राम से 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक को लोग लोन देने के लिए रेडी है, ऑल दे नीड इज अ गुड ट्रेनिंग एंड एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लेके जाके एक मार्केट सर्वे करना, मार्केट सर्वे करके अच्छा उनका खुद का इंटर्नशिप बना स्टोर शुरू करे तो उनके साथ और एक 10 आदमी को भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे सके।
0: जी चलते चलते हमारे युवा श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या रहेगा?
1: मेरा संदेश बोले तो एवरी वन शुड लर्न ए स्किल,
0: जी
1: एनी स्किल, स्किल इज यूजफुल फॉर देम टिल देयर लास्ट पे,
0: जी
1: बिकॉज अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं खुद के लिए भी बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। के वेणुगोपाल राव जी, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं यूथ स्किल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना।

0: आपने ये बताया कि अपने कौशल को पहचानने, निखारने और उज्जवल भविष्य को दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कैसे अपने कौशल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए बहुत बहुत
1: थैंक यू
0: धन्यवाद
1: वेरी
0: है।
1: मच। July 15 इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे।
0: जी
1: इस समय पे सब युवाओं को हमारा सेटविन के तरफ से और यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट के तरफ से मेरा शुभकामना।
2: श्रोताओं, ये था आज का विशेष हिंदी कार्यक्रम जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे अर्थात विश्व युवा कौशल दिवस को समर्पित था। आपने सुनी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्किल्स सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जॉइंट डायरेक्टर श्री के वेणुगोपाल राव जी के साथ एक विशेष बातचीत जिसे प्रस्तुत कर रही थी सीमा कुमारी। मित्रों, कौशल ही वह शक्ति है जो युवाओं को आत्मविश्वास, रोजगार और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। आवश्यक है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचाने, नए कौशल सीखें और जीवन भर सीखने की भावना को अपनाएं याद रखिए, शिक्षा और कौशल का संगम ही एक सशक्त व्यक्ति, समृद्ध समाज और विकसित भारत का आधार है। श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको ये विशेष कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करें, उनकी प्रतिभा को निखारने में उनका साथ दें और उन्हें नए अवसरों से जोड़ने का प्रयास करें। युवाओं के लिए हमारा संदेश है कि सीखना कभी ना छोड़ें। हर नया कौशल आपको सफलता की एक नई दिशा देता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, निरंतर मेहनत कीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहिए। एक कौशल युवा ही एक सशक्त समाज और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में सुनते हैं कुछ मधुर गीत। यह गाना है जिंदा, फिल्म भाग मिल्खा भाग से। गायक है सिद्धार्थ महादेवन, गीतकार है प्रसून जोशी, संगीतकार शंकर एहसान लोए, निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा।

दोस्तों, ये था गाना गिव मी सम सनशाइन फिल्म थ्री इडियट से। गायक है सूरज जगन और शर्मन जोशी। इसके संगीतकार है शांतनु मोइत्रा और निर्देशक है राज।

0: भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि उमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में उमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने उमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तश्वीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुज़ाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया जिसके दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ दो तरफा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ का जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शुबों में समझौतों और मुफाहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के साथ 30वीं भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे जहां दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और दो तरफा तिजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना तक करने का हदफ मुकर्रर किया। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: BJP ने कहा है कि भारत बहरे हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि क्लीदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लीदी और इक्तसादी संग मील करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहरे हिंद, भारत बहरुल काहिल क्लीदी इतिहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में ताउन, तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया

0: और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म को

0: देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
1: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।

0: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

0: हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इंजिलिया अल्फ्रेड ने एक बयान में बताया कि जिले में 1 से 19 साल की उम्र के 1,33,695 बच्चों को दवा देने के लिए इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कल दवा नहीं ले सकेंगे उन्हें 20 जुलाई को दवा फराहम की जाएगी। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों या गलत फहमियों पर यकीन ना करें और बच्चों को लाजमन ये दवा दिलवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस दवा के कोई मुजिर असरात नहीं हैं। करीमनगर ज़िला कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने हिदायत दी है कि ज़िले के तमाम बच्चों को पेट के कीड़ों से महफूज रखने के लिए दवा दी जाए। उन्होंने इस मुहिम की कामयाबी के लिए कबल अज़ीं जायज़ इजलास मुनक़िद किया। हनुमकुंडा ज़िला कलेक्टर चाहत बाजपाई ने कौमी इंसदाद पेट के कीड़ों के दिन को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ज़िले भर में 1 से 19 साल की उम्र के बच्चों में दवा तकसीम की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए असातिज़ा आंगनवाड़ी कारकुनान और तिब्बी अमला बाहमी ताउन से काम करे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के गरीब और मुतवसित तबके के आवाम के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने आज अंबरपेट असम्बली हलके के काचीगुड़ा डिवीज़न में हुकाम के साथ पैदल दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि हर हफ्ता और इतवार बस्तियों का दौरा करके मुकामी लोगों से मसाइल मालूम किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि बरसात शुरू होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से बस्तियां अंधेरे में डूबी हुई हैं और पीने के पानी का शदीद बहरान है। उन्होंने GHMC और महकमे आबरसानी के हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। आकाशवाणी है, आप उर्दू में इलाकाई खबरें सुन रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट की बहाली में नाकाम रही है। उन्होंने इस मामले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया। अपने मकतूब में रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बैरेजेस की बहाली के काम को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि NDAC की सिफारिशात पर बरवक्त अमल न करने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर NDSA की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की से औसत बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमे के मुताबिक मानसून के असर से बाज़ अज़ला में बारिश मुतवक्को है। कांग्रेस के मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के इंचार्ज वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी खसूसी नज़रसानी मुहिम के दौरान हर अहल वोटर को अपने नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर दर्ज करवाना चाहिए। वो मंचरियाल में SIR से मुतालिक मुनक़िदा शौर बेदारी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने अपने खिताब में कहा,
1: రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి SIR సార్ దేశంలో ఎప్పుడైతే ఇంటెన్సివ్ ఓటర్ లిస్ట్ సమగ్రంగా చేసే కార్యక్రమం జరిగిందో, ఎవరైతే చనిపోయిన వాళ్ళ పేరు ఉంటే తీసేయడం, డబుల్ నేమ్స్ ఉంటే తీసేయడం, ఓటు అనేది రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు, ఒక ఓటు కూడా తొలగించబడకుండా ఉండాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క లక్ష్యం.
0: साबिक नायब वज़ीर आला और स्टेशन घनपुर के रुकने असम्बली कड़ियम सिरेहरी ने कहा है कि रियासत में शदीद खुशहाली के बावजूद देवादुल्ला लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के जरिए मुत्तहिदा वरंगल ज़िले के किसानों की फसलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आज स्टेशन घनपुर असम्बली हलके के धर्मासागर रिजर्वायर में गोदावरी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत पानी की पंपिंग के अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को आबपाशी के लिए पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रियासती इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड ने किसान डिस्कम के कायम के लिए लाइसेंस जारी किया है। ज़रई शोबे के लिए कायम किए जाने वाले रैतु डिस्कम को हिदायत दी है कि वो 10 जुलाई से मरहलेवारी अपनी सरगर्मियां शुरू करें। कमीशन ने 3 माह के अंदर जामे कारोबारी मनसूबा पेश करने की भी हिदायत दी है। वाज़े किया गया है कि किसानों को ज़रई मकासद के लिए मौजूदा निज़ाम के मुताबिक मुफ्त बरकी की फराहमी जारी रहेगी और ज़रई मोटरों पर मीटर नस्ब नहीं किए जाएंगे। ताहम ज़रई फेडर्स और ट्रांसफार्मर पर बरकी के इस्तेमाल का अंदाज़ा लगाने के लिए मीटर नस्ब किए जाएंगे। रियासत भर में ज़रई बरकी की फराहमी लिफ्ट इरीगेशन स्कीमात मिशन भगीरथा, हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई और दीगल बलदियाती पीने के पानी की स्कीमें भी रैतु डिस्कम के दायरे कार में शामिल होंगी। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने खबरदार किया है कि कानून मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंचरियाल में कल रात कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बाद मीडिया से बातचीत की।
2: తప్పు కనిపిస్తే తప్పకుండా కఠిన చర్య.

0: ఉంటది. నేను ఎవరికి విన్నము, ఎవరికి క్షమించుకోలేము. ఒక మనిషి చేసిన తప్పుతో 10 మందికి బాధ ఉంటది. ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మీ అందరికి ఒక కరెక్ట్ దారి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గానే మనకు చాలా ఉపాధి వస్తుంది. ఆ ఉపాధిలో మీరు తయారీ చేసి మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండి భాగం తీసుకుంటే మీకు సక్సెస్ ఉంటది.
1: సింగారెడ్డి ని ఇతలా ది హే కే అభయహస్తం స్కీమ్ కే తహత్ ఇస్ సాల్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ ఇమ్తిహాన్ మే కామయాబ్ హోకర్ మెన్స్ కే లియే అహల్ పానే వాలే తెలంగాణా కే ఉమ్మీద్వార్ ఆన్లైన్ దరఖాస్తే దాఖిల్ కరే. కంపెనీ నే బతాయా కే దరఖాస్తో కీ జాంచ్ కే బాద్ అహల్ ఉమ్మీద్వారో కీ జాంచ్ కే బాద్ అహల్ ఉమ్మీద్వారో కో మాలీ ఇమ్దాద్ ఫరాహం కీ జాయేగీ. మజీద్ తఫసీలాత్ కే లియే ఉమ్మీద్వారో కో సింగారెడ్డి కీ సర్కారీ వెబ్సైట్ ములాహజా కర్నే కా మశ్వరా దియా గయా హై. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. नारायणपेट जिले मकतल हल्के में 320 करोड़ की लागत से ह्यूम तरीक़ेकार के तहत सड़कों की तामीर के कामों का कल रियासती वज़रा संग बुनियाद रखेंगे. तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट की बहाली में नाकाम रही है. डीवार्मिंग डे के मौके पर कल 13 जुलाई को रियासत के तमाम अजला में बच्चों में पेट के कीड़ों से तहफ़ की अद्वियात तकसीम करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं. और महकुमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की से औसत बारिश का इम्कान है. इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई.
2: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంల సమయం 6 గంటలకు కావస్తుంది. ఇప్పుడు హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
3: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే నవీన్ సక్సేనా. अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है. इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है. 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है. हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है. उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है. भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है. ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है. मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए. अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए. ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए. अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है. देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है. नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है.
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना

0: पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon the ship. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, and the United Arab Emirates. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continue. The mortal remains of the 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam are being transported to its Ho Chi Minh City. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post today, informed that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. Earlier in the day, the embassy said that 15 survivors of the tragic boat accident have been discharged from hospital after receiving medical treatment and are returning to India. Home Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stones of a series of development projects of the Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Gujarat. On the occasion, the minister also launched a massive tree plantation drive under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign, which saw the planting of over 1 crore 25 lakh saplings across his Lok Sabha constituency Gandhinagar today. Speaking on the occasion, Mr. Shah highlighted a long-term environmental roadmap to increase the green cover of the constituency to 20% by the 2029 elections. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Mr. Chauhan said Prime Minister Narendra Modi has taken several key initiatives to tackle climate change and global warming. Union Minister for Housing and Urban Affairs Manohar Lal has emphasized the need for adopting environmental friendly technologies in construction sector. Speaking at the function organized on the 100th

0: जल डमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे

0: लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
1: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफिनी को

3-7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुनते आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है श्री कुमार मर्डुर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मर्डुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मर्डुर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: दैट वॉज राग बागेश्री। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन

ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन्ह हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।